गरीब होके भी महंगी शराब पीता। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना तो मुस्कुरा